0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1,076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का

0: अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने

0: ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञान आनंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञान आनंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे एफआईआर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental

गुड मॉर्निंग मुंबई, नमस्कार सुप्रभात। मैं हूँ आरजे नम्रता एंड आज है 6th of June, शनिवार की सुबह है। वक्त हुआ है सुबह के 8:41 और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और ये है मस्त मुंबई, एक ऐसा शो जो हर सुबह देता है मुंबई को एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और थोड़ा सा पुरानी यादों का डोज। तो बने रहिए मेरे साथ सुबह के 10 बजे तक। मस्त मुंबई में ऐसे खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस वाले गाने को फ्रॉम द मूवी कभी कभी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
4: म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे नम्रता। वेल, सुबह के 9:06:15 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में और इस वक्त आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई मेरे आने आरजे नम्रता के साथ। आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है ये, जिसका प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज के दिन की क्या विशेषता है। भाई आज है 6 जून, यानी 6 जून है आज, और आज ही के दिन 1674 यानी 1674 में रायगढ़ किले में हमारे राष्ट्र महाराष्ट्र के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्य अभिषेक हुआ था और वे मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति बने। और यही नहीं, आज के दिन सिख धर्म के 10 गुरुओं में से छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का भी जन्मदिन है। तो भाई ये है

आज के दिन की विशेषताएं और इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ होगा ऑफ कोर्स आज के दिन. एंड आज के दिन अगर आप में से किसी भी लिसनर का जन्मदिन है तो आपको आकाशवाणी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. वेल, मुंबई की गर्मी जो है वो तो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन. और मैं क्या कहूँ, हम सभी मुंबईकर्स एंड नॉट ओनली मुंबईकर यार, पूरे भारत में आई थिंक बारिश का, मानसून का जो है वो बेसब्री से वेट हो रहा है ना. तो भाई गर्मी का जो हमारा इलाज है वो होता है आजकल एसीज, है ना. कुछ सालों पहले तक कूलर था, लेकिन सोच के देखिए कि अगर आपकी गर्मी का इलाज इन एसीज या कूलर या फिर कुछ ठंडे में नहीं बल्कि पसंदीदा गानों में छुपाओ तो आज मस्त मुंबई में हम बात करेंगे उन गानों की जो गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों की तरह महसूस होते हैं. कुछ गाने बारिश की याद दिलाते हैं तो कुछ पहाड़ों की, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है. तो फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा वो गाना है जो आपको गर्मी भूलने पर मजबूर कर देता है. 8657661071 865766107 1071 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि वो कौन सा गाना है जिसे सुनकर आपको सुकून महसूस होता है, ठंड महसूस होने लगती है और आप गर्मी को बिल्कुल भूल जाते हैं. फटाफट मुझे मैसेज करके बताइए. मीनवाइल एंजॉय कीजिए साजन फिल्म से इस गाने को, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में. बनी रही मेरे साथ, ये है 107.1 FM रेनबो और हम हैं म्यूजिकली yours.

अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाजों में था ये गाना फ्रॉम द मूवी साहिबा। 9:19 हो चुके हैं एंड आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो पर मस्त मुंबई। और मस्त वाले गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ क्योंकि भाई गर्मी से हम सभी बौखलाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा हो कि गर्मी से हमें थोड़ी राहत मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसे गाने सुने जिन्हें सुनकर हमें सुकून मिले, हमें लगे कि भाई हम ठंडी ठंडी वादियों में कहीं घूम कर आ गए हैं, है ना। मैं वर्चुअली आपको लेकर चलती हूँ। कभी सोचा है कि कुछ गानों को सुनते ही ना हमें ठंडक महसूस होने लगती है? कुछ क्या यार, हमारे बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्मों ने हमें ऐसे कई सारे गाने दिए हैं जिन्हें सुनकर, देखने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, जिन्हें सुनकर ही हम ऐसा लगता है कि यार भाई वाकई में एकदम दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया, ऐसा लग रहा है कि जो गर्मी से हमें परेशानी थी ना वो सारी की सारी खत्म हो गई है। कई सारे ऐसे गाने हैं जो पहाड़ों पर फिल्माए गए हैं, बर्फीले नज़ारे हैं जिन गानों में, हरी भरी वादियाँ हैं और अचानक लगता है कि AC का जो टेम्परेचर है ना वो 2 डिग्री कम हो गया है। वेल, यही तो जादूगरी, यही तो मैजिक होता है गानों में कि ये हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम एक्चुअली जाना चाहते हैं बट नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ हमारे इतने सारे जो काम होते हैं ज़रूरी, है ना। तो अगर आप मुंबई की गर्मियों में फंसे हुए हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी ठंडी पहाड़ी पर छुट्टियाँ मना रहे हैं, है ना। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसा कौन सा गाना पसंद है या फिर ऐसा वो कौन सा गाना है जिसे सुनकर आपको लगता है कि भाई मैं तो किसी किसी हिल स्टेशन पर पहुंच गया हूँ, ठंडी ठंडी वादियों में पहुंच गया हूँ, है ना। तो ऐसे कई सारे गाने जो हैं मुझे हमारे लिसनर्स ने लिखकर भेजे हैं एंड ऑफकोर्स मैं उन्हें प्ले करूँगी वन बाय वन। और प्रदीप अनंत कृष्णन जी की पसंद का ये गाना भीगी भीगी रातों में मैं ज़रूर प्ले करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट आप सुनिए ये वाला गाना, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं वादियों की तो इस गाने को नहीं प्ले करना बहुत ही इनजस्टिस हो जाएगा इस गाने के साथ, है ना। चांदनी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत खूबसूरत गाना है ये, सुनते रहिए इसी तरह और बनी रहिए मेरे साथ। मैं हूँ RJ नम्रता, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई ऑन 107.1 FM रेनबो और हम हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: म्यूजिकली और साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 FM रेनबो और ये है मस्त मुंबई। इस वक्त 9:30 हो चुके हैं एंड मैं हूँ आपके साथ आरजे नम्रता भाई। आज हम गाने सुन रहे हैं वो वाले जो आपको सुकून का एहसास देते हैं इस चिलचिलाती हुई धूप, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में। लोकल ट्रेन भले ही फुल हो भाई, ट्रैफिक भले ही जाम हो, लेकिन कानों में अगर आपके ईयरफोन्स हो तो थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाती है ना, है ना। वैसे साइंटिस्ट्स भी कहते हैं कि संगीत जो है ना वो तनाव यानी टेंशन को, फ्रस्ट्रेशन को जो है ना कम करता है और आपका जो मूड है उसे बेहतर बनाता है। तो बस इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे गाने सुनिए, ऐसे गाने जो आपको सुकून देते हैं, और ऐसे गाने आप सुनते हैं सिर्फ 107.1 FM रेडियो पर। भाई मुझे तो लगता है कि गर्मी में दो चीज़ें ना सबसे ज़्यादा राहत देती हैं। एक तो है भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम, है ना, या फिर कोई जूस, और फिर दूसरी होती है एक कूल प्लेलिस्ट जहाँ के गाने जो है ना वो बस ऐसे होते हैं कि बस बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में किसी ने जल तरंग बजा दिया हो। तो भैया आज हम बना रहे हैं मुंबई की कूलिंग प्लेलिस्ट, ऐसे गाने सुना रही हूँ।

आपको, जो आपको बहुत सुकून देने वाले हैं, फीलिंग देने वाले हैं वादियों की, बारिश की और एक अच्छे सुकून वाले मौसम के। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं या फिर लोकल में सफ़र कर रहे हैं, तो ये गाने आपके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बना सकते हैं। वेल, गणेश मगर की पसंद का ये गाना है, थोड़ी देर बाद आप सुनने वाले हैं। फिलहाल आपको सुनाती हूँ वो गाना जो अक्सर हमारे जहन में आता है जब भी हम बात करते हैं वादियों की। SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में रोजा फिल्म से वाला गाना। माय गॉड, इसकी जो बिगनिंग है, ये जो शुरुआत है, वाकई में बनी रही मेरे साथ। मैं हूँ RJ नम्रता, ये है मस्त मुंबई एंड हम है म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
1: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
2: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
3: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours।
3: म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरती अमृता एंड ये है मस्त मुंबई। भाई गर्मी से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं ना, ठंडा पानी, नारियल पानी, गन्ने का रस या फिर आम पना, ये सब कुछ मिल जाए तो भाई क्या कहने, है ना। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, है ना, डाइट ड्रिंक्स भी पीते हैं कई सारे। लेकिन एक चीज़ जो हमें मुफ्त में मिलती है और जो हमारे सीधे दिल तक पहुंचती है वो है संगीत, है ना। एक अच्छा सा गाना ना सिर्फ हमारा मूड बदल सकता है बल्कि पूरा दिन बेहतर बना सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सवेरे अगर आप कोई गाना सुन लें, है ना, बहुत खूबसूरत गाना हो, तो दिन भर आप उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। फिर चाहे आप उस गाने को सुनना चाहते थे या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत में कोई ये गाना सुन लिया जो आपको अच्छा लगा, तो पूरा दिन भर आप उस गाने को सुनते रहते हैं या फिर उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। तो मुस्कराइए, थोड़ा गुनगुनाइए और गर्मी को ज़्यादा सीरियस, है ना, मत लीजिए। आखिर मुंबई वालों ने हर मौसम को अपने अंदाज में जीना सीख लिया है भाई। हमें पता है कि गर्मी जब हद से बढ़ जाए तो भी हमें क्या करना है। जब बारिश आती है और वो भी कई कई हफ्तों तक कंटिन्यूसली मुंबई में चलती रहती है, तब भी हम नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और इससे हम शिकायत नहीं कर सकते।

तो भाई आज की हमारी एक कूलिंग प्लेलिस्ट जो है उसे ख़त्म करने का वक्त हो चला है। उम्मीद है कि इन सभी गानों को आपने बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय किया होगा और आपको थोड़ा बहुत तो ये फील हुआ होगा कि हाँ भाई गर्मी से जो है वो राहत मिल रही है ना। मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना, अगर दिल में संगीत है, गीत है, तो ज़िंदगी हमेशा सुरीली रहती है। तो भाई ठीक 10 बजे आप सुनने वाले हैं हिंदी में मुख्य समाचार और 10 बजे के उस पार नमस्ते भारत लेकर मैं फिर से हाजिर होती हूँ। इस घंटे का यानी मस्त मुंबई का ये आखिरी गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लकी अली की आवाज़ में। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सिर्फ हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे आकाशवाणी का 107.1 FM रेनबो चैनल। वक्त हुआ है सुबह के 10:42 और अब आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य वर्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। और अंत में शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच लिया है। प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। यह खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए। और इसी के साथ इस घंटे के ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
2: पगली GPS फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
1: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
2: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
1: हाय, ये है FM रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
2: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

0: वाकई में बहुत खूबसूरत गाना था ये,
1: जोश फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में जो आपने अभी अभी सुना।
0: 10:08 हो चुके हैं मुंबई, और वक्त हो गया है हमारे उस सेगमेंट का जहां हम बात करते हैं मुद्दे की, है ना। आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मैं हूं आरजे नम्रता, आज आपके साथ 107.1 एफएम सुन रहे हैं आप, और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। तो भाई नमस्ते भारत में हम अक्सर ऐसे मुद्दों पर बातें करते हैं जो चर्चा का विषय होते हैं, या फिर हमारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, या फिर हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, जो भी दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, या फिर ऐसी कुछ सोशल बातें जिसके बारे में अक्सर हम खुलकर बात नहीं कर पाते, या फिर ये सोचते रहते हैं कि नहीं यार ये भी कोई मुद्दा हुआ है ना। तो सुनो सुनो ए दुनिया वालों, जो कि हमारा सैटरडे स्पेशल सेगमेंट होता है, वहाँ पर हम ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर हम बात नहीं करते, या फिर करते भी हैं तो बहुत लाइटली, बहुत इजीली। तो भाई आरजे नम्रता हूँ मैं, आप सुन रहे नमस्ते भारत, और आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ और हमारी लाइफ में आने वाले उन लोगों के बारे में जो हमारी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, और हम कभी कभी एक सोच में पड़ जाते हैं। ज़िंदगी ना बहुत अजीब है, हम अक्सर सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, कल बात कर लेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे, या फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो हालचाल पूछ लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी ना कभी किसी को ये वादा नहीं करती कि कल ज़रूर आएगा। सारी दुनिया, सारी ये जो कहते हैं ना कायनात, बस एक उम्मीद, एक होप पर निर्भर है, बस हमें एक होप है कि हाँ कल होगा। लेकिन क्या ये गारंटी है, क्या ये प्रॉमिस किसी ने आपसे किया है कि कल होगा ही? हाँ ऑफकोर्स, अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक पॉजिटिव इंसान है, तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ हाँ कल भी है हमारे पास, हम कल कर लेंगे ना। लेकिन सच तो ये है, जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है और इससे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, कि ज़िंदगी आपको कभी प्रॉमिस नहीं करती कि कल आपको मिलेगा ही। हाँ ये आपकी पॉजिटिव थाट हो सकती है कि कल ज़रूर आएगा। तो आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जिन्हें हम कभी कभी अपनी व्यस्तता, अपने अहंकार, या फिर छोटी छोटी नाराजगियों में नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आखिर में ना तो आपका कमाया हुआ वो पैसा काम आता है, ना आपकी पोजीशन, आपका डेजिग्नेशन यानी कि पद याद आते हैं, तो सिर्फ अपने वो लोग जिनके साथ आपने अच्छे रिश्ते बनाए, जिनके साथ आपने जिंदगी के सुकून के वो पल गुजारे, जिनके साथ शायद आपकी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो गई हो, आपसे वो अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी आपके आखिरी वक्त में सिर्फ वही लोग आपके काम आते हैं, नो वन एल्स। लकी अली की आवाज में खूबसूरत गाना आप इंजॉय करने वाले हैं, ये गाना हम सभी की जिंदगियों के नाम। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, और हम हैं म्यूजिकली ऑर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो। नमस्ते भारत पर, आज आप सुन रहे हैं सुनो सुनो ये दुनिया वालों, और आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, उन खास रिश्तों की जो अक्सर हम जिंदगी में बनाते हैं, ना कि वो जो हमारे ब्लड रिलेशन में होते हैं, है ना, हमारे फैमिली मेम्बर, भाई उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन वो रिश्ते जो हम अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, या फिर हमारे कुछ ऐसे चाहने वाले जिनका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो हमारी परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं। कभी कभी एक फ़ोन कॉल भी रिश्ता बचा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के साथ अच्छे रिश्ते में होते हैं, दोस्ती का, प्यार का, या ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाती है या फिर कोई गलत फहमी हो जाती है, एंड अक्सर हम उन लोगों से जो कल तक हमारे दिल के इतने करीब थे उनसे बात करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं भाई, बहुत बात बिगड़ चुकी है, लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी बात आपके रिश्ते से, आपके प्यार से बड़ी कभी नहीं हो सकती। एक छोटा सा फ़ोन कॉल भी आपके उस रिश्ते को बचा सकता है, एंड ट्रस्ट मी, ये करने में ज़्यादा देर जब अगर लग जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको अफसोस भी होने लगता है। कैसे हो, बस ये कहना भी आपका दिन बना सकता है, और साथ में उस रिश्ते को भी बचा सकता है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया, या फिर आपको लगता है कि एक दूसरे की गलतियाँ निकालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस रिश्ते को बताया जाए, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये कहना भी आपकी दूरियों को मिटा सकता है। लेकिन होता क्या है, हम सोचते रहते हैं कि भाई पहल जो है वो सामने वाला करे, यानी सामने वाला जो है वो इनिशिएटिव ले, और इसी इंतज़ार में वक्त निकल जाता है। आज सोचिए कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी बात हो नहीं रही है। और मुझे बताइए कि वो कौन सा शख्स है। 8657661071 8657661071 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में वो कैसा, कौन ऐसा इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन बात आपकी हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपके झगड़े हो चुके हैं, गलत फहमियाँ हो चुकी हैं, नोक झोंक हो चुकी है। ट्रस्ट मी, अगर आप उस इंसान से बात

नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर उसे शेयर करते हैं तो भी आपको बहुत सुकून मिलेगा और शायद थोड़ी बहुत हिम्मत भी। केके की आवाज़ में काइट फिल्म से ये वाला गाना। बने रहिए मेरे साथ, में हूँ आरजे नम्रता और हम हैं म्यूजिकली ऑल।

रंग दे बसंती इस फिल्म से था ये गाना। 10:31 हो चुके हैं। मैं हूँ आरजे नम्रता एंड इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत पर। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में जो हम रिश्ते बनाते हैं वो अगर टूट जाए तो क्या कुछ हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, और हम क्यों उन रिश्तों की तरफ वापस नहीं बढ़ते, अपने गिले शिकवे लेकर ही बैठे रहते हैं, और एक अच्छा खासा वक्त, एक अच्छी खासी ज़िंदगी जो है वो यूँ ही कट जाती है। शुभा लक्ष्मी मत्स्यकर जी कहती हैं कि उनकी बचपन की एक सहेली थी और उन्होंने जो अपना बचपन है वो उन्हीं के साथ बिताया, लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ गई और अब वो एक दूसरे से मैसेज करते हैं एंड फ़ोन नहीं कर पाते, क्योंकि रिश्ता जो है वो थोड़ी बहुत जब गलतफहमी आ जाए तो ऐसा लगता है कि हम कैसे बात करें, तो मैसेज के थ्रू बात हो जाती है लेकिन फ़ोन पर जो है वो कॉन्टैक्ट थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो शुभा लक्ष्मी जी, मैं कहूँगी कि अगर आप मैसेज पर बात उनसे करते ही हैं तो एक बार फ़ोन भी कर देखिए, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप पहल करें और आप ये सोच रहे हैं कि वो पहल करें, और इस चक्कर में है ना एक बहुत अच्छा समय जो है, जो आप, क्योंकि आप बचपन की सहेलियाँ हैं, आप एक बहुत अच्छा समय जो है वो अपना गंवा रही हैं। सो आई मस्ट से कि आप पहल करिए, कोशिश करिए उनसे कॉन्टैक्ट करने की, उनसे कॉल पर बात करने की। बात करने से बुरी जो गलत फहमियाँ हैं ना वो भी ठीक हो जाती हैं। पंकज मौर जी कहते हैं कि उनके मामा से उनकी बातचीत

नहीं हो रही थी बहुत समय से, लेकिन अप्रैल 2026 यानी पिछले साल से, यानी इसी साल से कुछ 2 महीने पहले से उनसे उनसी बात करना जो है वो शुरू हो गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए किसी भी रिश्ते में किसी ना किसी को तो पहल करनी होती है, और अगर आप पहल करते हैं तो कभी आगे जाके ना आप रिग्रेट नहीं करते हैं। और सच बोल रही हूँ मैं कि ये जो रिग्रेट की भावना होती है ना, कि अरे यार काश हमने पहल कर ली होती, हमने ये कर लिया होता, हमने समय दे दिया होता तो क्या हो जाता, ये बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकती है, जीना मुश्किल हो जाता है वाकई में रिग्रेट की जो भावना होती है। इसीलिए अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए और फिर ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, या फिर अपने जो दोस्त हैं आपके जो हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करें अपनी तरफ से। और आप अगर बचा रहे हैं तो फिर शायद ऊपर वाला भी आपकी ज़रूर सुनेगा। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ पाना चाहें तो सारी कायनात उसको आपके पास लाने के लिए मजबूर हो जाती है। रिश्ते ना कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें गलतफहमी अक्सर होती है, बहस भी होती है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम उन्हें छोड़े नहीं, हम उन्हें संभाल कर रखें, उन्हें पकड़े रहें। क्योंकि एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही एहसास होता है कि बहसें तो बहुत छोटी थी यार, झगड़ा तो बहुत छोटा था, लेकिन वो इंसान कितना कीमती था। एक छोटी सी कहानी आए कि एक व्यक्ति ने अपने पिता को कई दिनों से फ़ोन नहीं किया था। वह हमेशा यही सोचता था रहा कि रविवार को बात कर लूँगा, लेकिन एक रविवार ऐसा आया जब फ़ोन करने की जगह उसे खबर मिलती है, और उसके बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ यादें बची होती हैं। तो अगर यादें बनानी है तो अच्छी यादें बनाएं, ये यादें बनाएं कि भाई हमारा झगड़ा हुआ था, फिर हम मिले, फिर बात हुई, और फिर सब कुछ पहले जैसा परफेक्ट हो गया। क्योंकि रिलेशन तभी परफेक्ट होता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, फिर चाहे कैसे भी हो, साथ होना इज परफेक्शन, ना कि अलग अलग होना और एक दूसरे की शिकायतें करना। काई पोछे इस फिल्म से मिली नायर और अमित त्रिवेदी की आवाज़ में खूबसूरत गाना एंजॉय करने वाले हो। अभी अभी आप सभी यानी आकाशवाणी के सभी लिसनर्स और उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप, उनके रिलेशंस के नाम बने रहिए हमारे साथ। ये है नमस्ते भारत, मैं हूँ आरजे अमृता एंड हम हैं म्यूजिकली योर्स।

दिल चाहता है इस मूवी का टाइटल ट्रैक आपने अभी अभी सुना, 10:45 हो चुके हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे नम्रता एंड आप सुन रहे हैं सुनो सुनो ये दुनिया वालों, और हम बात कर रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में जो रिश्ते आपने बनाए हैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, कोशिश करिए कि उन रिश्तों में कभी कोई दरार ना आए, क्योंकि इन दी एंड या फिर जब आप ये सोचें आगे जाके आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सारी धन दौलत ही सारे पैसे या जो भी ऐश आराम आपके पास है, जो भी आपके पास स्टेटस है, वो शायद इतना काम आपके नहीं आएगा। हाँ, कहते हैं कि पैसे से सब कुछ यू नो ईजी हो जाता है ना, लाइफस्टाइल इजी हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास अच्छे दोस्त ना हो, अच्छे वेल विशर्स ना हो तो फिर क्या। ज़िंदगी बहुत तेज़ है, ख़ासकर मुंबई में, यहाँ लोकल ट्रेन के समय से दौड़ती है ज़िंदगी, और क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम इस वक्त तक स्टेशन पर नहीं पहुँचे तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, उसी तरह ज़िंदगी भी है। ऑफिस, घर, जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, इतना सब कुछ तेज़ चलता है कि कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों को समय ही नहीं दे पाते। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने ऑफिस में इतने ज़्यादा काम में खोए हुए रहते हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि अपने घर वालों को समय देने के लिए समय आपके पास है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि वक्त जो है वो कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग आज हमारे साथ हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा साथ रहे, लेकिन जो प्यार है, जो अपनापन है, उसे जताइए, क्योंकि जताने से ही सामने वाले को पता चलता है कि उनकी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में कितनी है, वो कितने ख़ास हैं। और सिर्फ जताइए ही नहीं यार, मतलब सिर्फ नाम के लिए ही नहीं आपको जताना है, आपको वाकई में उन्हें भरोसा दिलाना है कि हाँ तुम ख़ास हो मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हमारे पास आज का दिन है, आज का पल है, और यही पल रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे बेहतर काम करता है। आज मैं ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि इस शो के ख़त्म होने के बाद अपने उस व्यक्ति को जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, जिससे आप बात करना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसमें आपकी मॉम भी हो सकती है, कभी कभी यू नो अपने घर वालों से भी हमारा

सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, है ना। आप अपना कर्म करिए, अपना ये जो कार्य है, अपने रिश्ते को संभालने का वो करिए, और फिर देखिए कि आगे क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन आपके पास ये तसल्ली होगी कि हाँ आपने कोशिश की। 13 नाल लव हो गया इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़ में आ रहा है ये वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ, ये है नमस्ते भारत, मैं हूँ आरजे नम्रता, एंड हम है म्यूजिकली योर्स।

वाकई में जिंदगी से अक्सर हम यही कहते हैं कि भाई तू हमें जीने दे, क्योंकि जिंदगी हमसे कभी ये वादा नहीं करती कि भाई कल होगा या नहीं, है ना। ये तो बस हमारी उम्मीदें हैं कि कल जरूर होगा। आई रियली होप कि आज की इस बातचीत में आपने आई थिंक इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि जिंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे उन खास लोगों के साथ जीना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। क्योंकि अगर ये लोग हमारे आसपास ना रहें तो वाकई में ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों को संभाल कर रखिए, प्यार जताइए, माफ़ कीजिए, धन्यवाद कहिए और अपने लोगों के लिए समय निकालिए। इसी को ज़िंदगी जीना कहते हैं। ये ज़िंदगी की किताब में कितने पन्ने बाकी हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो पन्ने हमारे पास हैं उन्हें खूबसूरत ज़रूर बनाया जा सकता है। मैं आरजे नम्रता इस शो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले शो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है, इस बात का मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। अपने रिश्तों को सहेज कर रखिए, अपने लोगों को समय दीजिए और मुस्कुराते रहिए। अगले शो में ना बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है। वेल, 11 बजे के उस पार न्यूज़ सुनेंगे आप और आरजे संतोष आ चुकी हैं स्टूडियो में, तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ हम हैं म्यूजिकली और

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। और अब समय है कि आपको लेकर चले समाचार की दुनिया में। तो आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आत्मसम्मान, सुशासन और राष्ट्रीय रक्षा के आदर्शों पर आधारित शासन प्रणाली बनाई। इससे भारतीय जनता में नए सिरे से आत्मविश्वास जागा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए पारदर्शी और तनाव मुक्त माहौल सुनिश्चित करें, साथ ही परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। कल मुंबई में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सतर्क रहने और परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। आगे है, भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान में तथाकथित विधानसभा चुनाव करने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। और अंत में खेल समाचार। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामिगाहारा ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स पर आज आपके साथ आपकी दोस्त संतोष और कार्यक्रम ब्रेक फ्री के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बस हमारे साथ बने रहिए और प्यारे प्यारे गीत जो आपको कुछ अलग ही सुकून की दुनिया में ले जाएंगे उसकी शुरुआत करते हैं। बातें बहुत सारी करेंगे लेकिन फिलहाल इस गाने से शुरुआत इस कार्यक्रम की। नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर। हर घर

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में
3: सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल। आपके साथ आज मैं आपकी दोस्त संतोष। कार्यक्रम ब्रेक फ्री में आपने दो गाने सुन लिए और चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं बातें करना भी, क्योंकि जब कोई किसी से बात करता है तभी तो दिल से दिल का कनेक्शन बनता है। तो आज हम ऐसे विचारों की बात करेंगे जो शहरों को और भी खूबसूरत, ठंडा और पर्यावरण अनुकूल बना सकता है। देखिए, कल हमने जो है बहुत सारी बातें की, परसों बहुत सारी बातें की, उसके

पहले बहुत सारी बातें की, हमेशा बातें करते हैं ना, और बात करने से ही अपनापन होता है। तो आज आपको बता दें कि आज है विश्व हरित छत दिवस, वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे। ये दिवस हर साल जून के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और लोगों को अपनी छतों पर, अपने टेरेस पर हरियाली विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, अगर कंक्रीट की गर्म छतों की जगह हरियाली से भरी छतें हों तो शहर कितना सुकून देने वाला लगेगा। और यही नहीं, ये छतें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाती बल्कि पर्यावरण की रक्षा में सहयोग भी देती हैं और आंखों को बड़ा सुकून भी देती हैं।

अब आप सोचेंगे कि आखिर ये हरित छत क्या होती है। जैसे कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो बहुत सारे पौधे लगाए गए, पौधारोपण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, उसी तरह ये जो भी है हरित छत दिवस, यानी कि ऐसी छत जिस पर मिट्टी बिछाकर पौधे, घास, फूल या छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, इसे ग्रीन रूफ भी कहा जाता है। और इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री भी बहुत दिलचस्प है। प्राचीन काल में कई देशों में घरों की छतों पर घास और पौधे उगाए जाते थे ताकि तापमान को संतुलित रखा जा सके। और आज आधुनिक शहरों में यही विचार फिर से लोकप्रिय होना शुरू हो गया है। दुनिया के कई बड़े शहरों में हजारों इमारतों की छतें हरियाली से ढकी जाने लगी हैं, यानी छत अब सिर्फ छत नहीं है बल्कि एक छोटा सा बागीचा, छोटा सा जैसे किचन गार्डन होता था, ऐसे ही रूफ गार्डन भी बनता जा रहा है, जो कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है और बहुत ही उसका फ़ायदा मिलता है। फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश फूल, फ्रेश सब्जियां भी लोग उगा लेते हैं और इसी के साथ ही जो है टेम्परेचर भी घटता है। तो सोचिए कि कितने सारे फ़ायदे हैं इस हरित छत को बनाने से।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप FM रेनबो मुंबई के स्टूडियो में पहुंच गए हैं और जैसा कि

ऑक्साइड सोखने और पक्षियों और तितलियों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने में भी मददगार होते हैं। यानी एक छोटी सी हरित छत पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे और इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर जो है हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। और जब वातावरण शांत होता है, हरियाली होती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ती है तो दिमाग शांत रहता है, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है और साथ ही अगर संगीत साथ हो तो और भी दिमाग को सुकून मिलता है। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आकाशवाणी मुंबई के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पश्चिमी क्षेत्र ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की पैकिंग या परोसने के लिए समाचार पत्रों के पेपर का उपयोग तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण का मानना है कि इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। समाचार में आगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ आमने सामने की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस युद्ध को समाप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। और अंत में खेल समाचार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद को नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि प्रज्ञानंद की ये उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा, अटूट समर्पण और वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर उनका लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के लिए गर्व का विषय है और पूरे भारत में अनगिनत युवा शतरंज खिलाड़ियों को वो प्रेरित कर रहे हैं। समाचार समाप्त हुए।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो चैनल पर। आकाशवाणी मुंबई का ये चैनल आपके लिए लेकर आया है प्रोग्राम म्यूजिक कैफे और आज आपके साथ आपकी दोस्त संतोष।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां जो लफ्जों में।
3: एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं, म्यूजिक कैफे कार्यक्रम चल रहा है। तो हम इस कैफे में आ गए हैं तो थोड़ी सी हमारी और आपकी बातचीत भी हो जानी चाहिए ना। तो वैसे तो दोस्तों आज की जो दुनिया है ये हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम से ही नहीं बल्कि हमारे डिजिटल प्रोफाइल से भी बनती है ना। एक क्लिक में दोस्ती होती है, एक पोस्ट में विचार साझा होते हैं और एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है सेकंड्स में। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी ऑनलाइन पहचान हमारी असली पहचान है? तो आइए इसी पर आज कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि जो हमने इतने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं वो जो है कहाँ तक हमारा साथ देते हैं। फिलहाल हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: जोकर
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो
2: हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हमारी जो दोस्ती है ये बिल्कुल प्योर वाली दोस्ती है और जो ऑनलाइन पर लाखों दोस्त जो जुड़ते हैं जो व्यूअर्स होते हैं सब्सक्राइबर्स होते हैं ये आपकी एक चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और आपको सर आँखों पर बिठा लेते हैं लेकिन वहीं आपकी कोई छोटी सी गलती होती है तो बस आपको उठा कर पटक भी देते हैं। तो ऐसी दोस्ती होती है। प्रणव शिंदे लिखते हैं कि ऑनलाइन पहचान हमारी असली पहचान का केवल एक चुनिंदा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से वास्तविक पहचान नहीं माना जा सकता है। ये हमारे व्यक्तित्व विचारों और प्राथमिकताओं के एक खास अंश को ही दुनिया के सामने पेश करती है। बिल्कुल सही लिखा आपने। और विजेंद्र घाटोल जी अकोला से हैं, म्यूजिक कैफे एंजॉय कर रहे हैं, गाने बहुत सुंदर लग रहे हैं इन्हें। और अजय साखरे जी इंदौर से हैं, इन्हें भी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज मोहोड जी अमरावती से हैं और गुड आफ्टरनून आपने कहा है, आपको भी गुड आफ्टरनून। शुभ लक्ष्मी मस्तकार हैं हमारे साथ, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने जो टेरेस पर जो है बागवानी करने की जो बात की थी तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत

अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की हैं। और राजेंद्र जुथानी जी हमारे साथ हैं और ये भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, कांदीवली वेस्ट से हैं ये। और अनंत प्रदीप कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने कुछ गाने की फरमाइश कर दी है हिट एंड हॉट के लिए, जिस पर विचार किया जाएगा समय आने पर। अशोक पाटिल वर्ली कोलीवाड़ा से हैं और ये लिखते हैं कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। बहुत बड़ी बात आपने लिखी है, बहुत शुक्रिया। शंकराचार्य जी तेलंगाना से इन्होंने हमें मैसेज किया है और लिखा है कि हम भी इस प्रोग्राम में 2 बजे तक शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी हैं अकोला उमरी से और जो है गुड आफ्टरनून प्रमोद जी। और अंजू जी अंधेरी ईस्ट से हैं, डॉक्टर अंजू, इनको इन्होंने हेलो किया है, अंजू जी हेलो। और बाबा हैं दादर से, तो जो है टाटा बाटा बाबा तो बहुत अच्छा लिखा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल प्रयास यही रहेगा कि आप सबको जोड़ कर रखूं, आप सबको खुश करने की पूरी कोशिश रहेगी हिट एंड हॉट में। और मुकुंद कुलकर्णी पुणे से हैं, इन्होंने गुड आफ्टरनून कहा है। फिरोज सिगनपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो है इन्होंने अपने गाने की फरमाइश की है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और जो है अगला गीत आपके लिए ये रहा।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, म्यूजिक कैफे कार्यक्रम चल रहा है और आज आपके साथ आपकी दोस्त संतोष और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग फोन पर बातें करने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कुछ बस सुकून से जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं। सोशल मीडिया ने युवाओं को एक नई आवाज़ दी है। आज कोई भी युवा अपनी कला, अपनी सोच और अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख सकता है। सीखने के लिए बहुत सारे अनगिनत मंच हैं, रोजगार के अवसर हैं और जो है प्रेरणा देने वाली मोटिवेशनल बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। और अगर इनका सही उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अवसर का बहुत बड़ा संसार है और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां AI से लोग डरते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरते हैं कि कहीं ये लोगों की नौकरी ना खा जाए, वहीं बहुत सारी सहूलियत है और बहुत सही से उपयोग करने से चाहे AI हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारा खुद का परिवार दोस्त हो, हर किसी का सही उपयोग और हर किसी से सही व्यवहार जो आपका होता है, जो आपका बर्ताव होता है लोगों के साथ, चाहे वो मशीन हो चाहे वो इंसान हो, आपका अच्छा बर्ताव, अच्छी जानकारी और किस वक्त क्या करना है, क्या बोलना है, उसकी जानकारी ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
1: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
2: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
3: अगर बात की जाए हमारे यंग जनरेशन की, हमारे युवाओं की, तो सोशल मीडिया उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे सोशल मीडिया ने युवाओं को एक नई आवाज़ भी दी है। आज कोई भी युवा अपनी कला, अपनी सोच और अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख सकता है और बहुत कुछ करने का अवसर उसे मिलता है। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, वो अपनी जो है नॉलेज का उपयोग भी कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। कई बार सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। दूसरों से तुलना, लाइक्स और फॉलोअर्स की जो दौड़ होती है और लगातार ऑनलाइन बने रहने का जो दबाव होता है, ये युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर तस्वीर पूरी कहानी नहीं होती है। तो दोस्तों, लाइक्स गिने जा सकते हैं लेकिन आपकी काबिलियत की कोई गिनती नहीं है। आप जो है दौड़ में, होड़ में मत शामिल होइए। हाँ, अपनी जो है क्षमताओं का उपयोग जरूर कीजिए।

0: श्रोते हो, तुम्ही आता ऐकत आहात ती अज्ञात मुंबईची वरळीच्या बांधाची गोष्ट। ह्याच्या पुढच्या भागांमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या तुम्हाला माहित नसलेल्या अशा गोष्टी घेऊन येतोय, म्हणजे राणीच्या बागेची गोष्ट, राणीच्या पुतळ्याची गोष्ट आणि मुंबईतल्या सगळ्यात पहिल्या #5star हॉटेलची गोष्ट।
1: अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम आपल्याला ऐकायला मिळेल सकाळी 7:45 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर
0: आणि एनी टाइम न्यूज ऑन AIR या ऍप वर।
2: कधी कुणी यन, कधी कुणी कसे कष्टले, कष्टले हे मुंबई घडताना।
3: तो FM रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, और जहां तक ऑनलाइन की बात हो रही थी कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, तो उसके लिए बस यही कहेंगे कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर हम उसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन खुद को चार्ज करने के लिए थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। और ऑनलाइन रहना जरूरी है, लेकिन अपने सपनों से ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। तो सपनों से ऑनलाइन रहिए और अपने सपनों पर काम करिए। डिजिटल दुनिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमारी पूरी पहचान नहीं है। अपनी प्रतिभा को ऑनलाइन भी चमकाइए और वास्तविक जीवन में। और याद रखिए दोस्तों, प्रोफाइल आपकी तस्वीर दिखाती है, लेकिन आपका चरित्र आपकी असली पहचान होता है। डिजिटल दुनिया में दिखना आसान है, लेकिन असल दुनिया में कुछ कर दिखाना उससे भी बड़ी बात होती है। तो अपने सभी युवा साथियों से यही कहूंगी कि जो तकनीक का उपयोग आप कीजिए, लेकिन तकनीक का गुलाम मत बनिए। ठीक 1 से आप सुनेंगे समाचार, और 1:05 पर आपकी फरमाइश के साथ हिट एंड हॉट कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाऊंगी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर हिट एंड हॉट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूं मैं, आपकी दोस्त संतोष। और जैसा कि इस प्रोग्राम में आप सबको पता है कि आप की फरमाइश जो होती है उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है, यानी ये कार्यक्रम आपके पसंद के गीतों पर आधारित होता है। और इस कार्यक्रम में जब कोई विशेष दिन होता है तो वो गाने भी आप लोग फरमाइश करते हैं। तो चलिए, आज भी बहुत विशेष दिन है और आज आपको बता दें कि 6 जून है और 6 जून 1929 को जन्म हुआ था सुनील दत्त साहब का, जो हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से भी बनी। उन्होंने मदर इंडिया, सुजाता, साधना, वक्त और पड़ोसन जैसी तमाम यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी सादगी, उनकी संवेदनशीलता और उनका प्रभावशाली अभिनय उन्हें दर्शकों का चहेता बनाता था। फिल्मों के साथ साथ वो सामाजिक कार्यों से और जनसेवा से भी जुड़े रहे। सुनील दत्त एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पर्दे पर और असली जीवन में दोनों जगह अपनी असली पहचान बनाई, असली छाप छोड़ी और वो सदा सदा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए। आज उनके जयंती दिन पर हम उन्हें याद करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं की एक फिल्म से करते हैं, उन्हीं की एक फिल्म के एक गाने से करते हैं। और ये है हमराज फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना और वैसी ही मधुर धुन है संगीतकार रवि की। और इस गाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है अमरावती से पंकज मोहोड ने। तो हमारे और भी श्रोता इस गाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे और सबका नाम आगे शामिल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।

एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। जानी दुश्मन फिल्म का ये गाना पसंद किया था प्रमोद चिंचोलकर ने उमरी आकोला से। और हिट एंड हॉट प्रोग्राम चल रहा है, आज हम सुनील दत्त साहब को याद कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सुनील दत्त साहब की फिल्मों के गाने फरमाइश किए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उन गानों को पहले शामिल किया जाए जो सुनील दत्त साहब की फिल्मों से हैं। तो कार्यक्रम का अगला गाना इसी कड़ी में है, राकेश माथुर जी की पसंद पर पुणे से इन्होंने हमें व्हाट्सएप SMS किया है और यह है फिल्म चिराग का गीत।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं। और चलिए, कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने अपनी फरमाइश भेजी है, तो सबकी फरमाइश पूरी करने के प्रयास में चलिए अगला गीत अपने आप को लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, तो चलिए अगला गाना सुनते हैं।

पुणे से राकेश माथुर जी ने चिराग फिल्म का गाना पसंद किया था, वो गाना सुचारू रूप से नहीं चल पाया, लेकिन शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी ने जो गाना पसंद किया था सुजाता फिल्म का, जलते हैं तेरे लिए, ये गाना हम लोगों ने अभी सुना। और इस गाने के साथ इनके बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इन्होंने बचपन में ये फिल्म देखी थी अपने माता जी, पिताजी और अपने भाई के साथ, तो इस गाने के साथ इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ श्रोताओं की पसंद पूरी हो रही है और हमारे कुछ श्रोता जो है उनकी लिस्ट बिल्कुल है हमारे आंखों के सामने। और शुभदा जी का भी मैसेज आया है, ये भी इन्होंने अपने गाने की फरमाइश की है, विजेंद्र घाटोल अकोला से हैं। राजेंद्र जुथानी जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी हैं और हीरामणि वर्मा जी हैं और इनके साथ पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा है। दत्त रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इन्होंने मैसेज किया है। और मुकेश कश्यप जी हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इनके साथ इनके साथी हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। बहुत जो है बड़ा परिवार है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय साखरे जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखकर भेजा है, सिर्फ उनका नंबर आया है। गबन फिल्म के गाने की फरमाइश की है, पूरी कोशिश रहेगी। और फिलहाल जो है अब राष्ट्रीय मराठी समाचार का समय हो गया है, तो समाचार के उस पार मिलते हैं और प्रयास करेंगे जितने लोगों की भी फरमाइश पूरी कर सकें जरूर करेंगे। सुनते रहिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का ये चैनल, और आकाशवाणी मुंबई का ये रेनबो चैनल आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं, और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमारे साथ 24 घंटे कभी भी कहीं भी जुड़े रह सकते हैं और सुन सकते हैं। तो कार्यक्रम चल रहा था हिट एंड हॉट समाचार के पहले, तो इसी कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जहां तक बात करते हैं अभिनेता सुनील दत्त की, तो सुनील दत्त ने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1981 में आई फिल्म रॉकी से उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया, हम सभी जानते हैं। और मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और सकारात्मकता का परिचय दिया। उन्हें भारतीय सिनेमा और समाज के प्रति योगदान के लिए कई सम्मान, कई पुरस्कार प्राप्त हुए। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में याद करते हैं जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए और एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, और जहां चाह वहां राह, ऐसा कह सकते हैं। सुनील दत्त के जीवन बायोग्राफी को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उनकी फिल्मों के बहुत सारे गाने पसंद किए हैं, लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं तो आप नाराज नहीं होते हैं कि समय को कहीं भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, तो जितना भी पॉसिबल होगा उतने गाने सुनाने का प्रयास जरूर करते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।
4: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
5: तो अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना था लता मंगेशकर जी की आवाज में, और ये जो है खानदान फिल्म का गाना था, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ। इस गाने की फरमाइश की थी प्रणव शिंदे ने मान खुर्द मुंबई से। तो प्रणव शिंदे जी, आपकी पसंद पूरी हो चुकी है, और अगला जो गाना हमारा आ रहा है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है, और जो है किशोर कुमार मन्नाडे और महमूद की आवाज़ें हैं। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना अगेन आ रहा है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। इस गाने के लिए फरमाइश की है अरविंद कुलकर्णी इचलकरण जी ने, और जो है संजय दर्शन जी ने भी किया है, और भी कई श्रोताओं ने इस गाने की फरमाइश की है। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना आएगा, लोफर फिल्म का गाना आएगा, जो कि है आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है। ये दो गाने हम आपको बैक टू बैक सुनवाने वाले हैं। अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर आपका नाम कार्यक्रम में शामिल ना हो, तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो विजेंद्र घाटोल जी हैं अकोला से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी हमारे साथ हैं, कविता और दिग्दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ कैंट से, और इनका गाना भी बहुत प्यारा था, लेकिन इनका गाना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, ये गाना इनका शामिल नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि लिस्ट बिल्कुल अब जगह नहीं दिखा रही है। और जो है हमारे साथ हैं का बायन, ऐसा कुछ इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, और मराठी में इन्होंने समाचार लिखा है कि महाडी बीटीवर तूर मूंग उड़ी द्याचे बियाणे या घटका खाली बियाणे संच या घटका नंतर ऑनलाइन करण्यात यावा। इन्होंने कुछ जो है सरकारी योजना के बारे में कुछ लिखा है, और बीज सोयाबीन वगैरह का बीज जो होता है, तो जो है तूर दाल जिसे अरहर दाल कहते हैं, मूँग उड़द, इन सब के बारे में कुछ लिखा है कि इस क्षेत्र में जो है अगर इसकी जो है कमी है तो उसे ऑनलाइन लोगों को बताया जाए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और हितेंद्र दास ने आसाम से हमें मैसेज किया है, अभिजीत गवांडकर जी हैं उमर खेड़ महाराष्ट्र से, इनके साथ हैं सरिता सिद्धांत एकांश, और इनका लाडला है टुक टुक गवांडकर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जुथानी जी

कार्यक्रम में आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, आपका नाम है प्रथमेश डोंगरे, मुंबई विक्रोली ईस्ट से हैं आप। अरविंद कुलकर्णी जी तो हमारे साथ हैं ही, संजय दर्शन जी हैं ही, पंकज मोहोड़ जी हैं ही, और बाबा हमारे साथ दादर से हैं, राम प्रजापति हमारे साथ वसई से जुड़े हुए हैं, और संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन स्वामी ऐरोली से जुड़े हुए हैं, और आपकी फरमाइश भी हम अगले बार ज़रूर पूरी करेंगे, और विट्ठल मुंगसे हमारे साथ अहिल्यानगर से जुड़े हुए हैं, और हमारे एक श्रोता और हैं, इनका नाम जो है अनिल शिंदे हैं सोलापुर से, अंजू डॉक्टर अंजू हैं अंधेरी ईस्ट से, विजय महोबिया खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कविता सोनू मोनू रानू और सपना शिवी आप सब साथ में हैं, मुकुंद कुलकर्णी जी हमारे साथ पुणे से हैं, और एक नाम है योगेश बोचारे जी का, और अशोक पाटिल वरली से हैं, और हमारे साथ हैं शंकराचार्य जी तेलंगाना से, और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं, मनीष भालचंद्र हैं पाटिल वाणवन से, रजनीकांत पाटिल जी हैं, और भी बहुत सारे, सुरेश वैष्णव जी हैं, मुकुंद कुलकर्णी हैं, जिन लोगों का नाम छूट रहा है उनसे माफ़ी चाहते हैं, और जिन लोगों के गाने आज नहीं सुनवा पा रही हूँ उन लोगों से तो बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, और इसी के साथ अब कार्यक्रम में दो गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, पहला पड़ोसन से और दूसरा लोफर से, और आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, पानी समय से पीते रहिए, और गर्मी से के प्रकोप से बचने के लिए, और बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं और हमारी परिस्थितियां समझते हैं, और आपसे यही कहेंगे, टेक केयर, बाय बाय।

चतुर नार अम पकड़ कर रखेगा।

तो आप सबके चेहरों पर मुस्कान बिखर गई ना, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ गाना और राजेंद्र कृष्ण साहब के लिखे हुए और भी कई गाने कार्यक्रम में हम सब ने सुने हैं। आज 6 जून है और 6 जून 1919 को उनका जन्म हुआ था। तो हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब को भी हम दिल से नमन करते हैं और उनके गाने हम हमेशा सुनते रहे हैं, इंजॉय करते रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ और जुड़ गए हैं जिनको हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और रोहा शहर का तापमान 36 बता रहे हैं हमारे कोई श्रोता हैं, इन्होंने अपना नाम मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से हैं। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिनका नाम शायद छूट रहा है, तो माफ़ी चाहते हैं। और जो है आप सबसे अब जो है विदा लेने का समय तो हो ही गया था, विदा ले भी चुके थे, लेकिन कार्यक्रम का आखिरी गाना जो हमने अनाउंस किया था, बस थोड़ा सा सुन लीजिए।

0: परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी. हमने

0: नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी

0: सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 MHz पर। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और ढेर सारे प्यार भरे गीतों के साथ, ढेर सारी प्यार भरी बातें आप सुनते हैं लव यू जिंदगी इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस गीत के साथ।

लव यू जिंदगी प्रोग्राम में हम बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और जिंदगी के बारे में बात करते हैं, जिंदगी से जो हमें मिला है उसके बारे में बात करते हैं और जिंदगी को अगर हमने कुछ देना है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ढेर सारी बातें तो होती ही हैं प्रोग्राम में, लेकिन उनके साथ साथ गीतों से भी ये महफिल सजती है और जब गीतों से ये महफिल सजती है तो उसका लुत्फ आर्ट भी उठाते हैं। और शनिवार की, खास तौर पर शनिवार की ये जो शाम है ना, ये वीकेंड की शाम होती है, तो कल रविवार की छुट्टी है और आज वीकेंड की शाम है, तो

ढेर सारी जो प्लान्स हैं ना वो आपके दिमाग में भाग रहे हैं, और ये जो प्लान्स आपके दिमाग में भाग रहे हैं, आप घर की तरफ जा रहे होंगे ऑफिस से निकलकर, तो उस समय जो है वो आप ये गीत सुन रहे हैं और इन गीतों का आनंद उठा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। तो जो प्लान्स हैं आपके दिमाग में उन्हें चलने दीजिए और सक्सेसफुली जो है वो कल का दिन आप सेलिब्रेट कीजिए इन सारे प्लान्स के साथ। और साथ ही साथ ये जो गीतों का सिलसिला है वो भी हम शुरू रखते हैं।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं कि लापरवाही कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। कोई भी आप काम करें तो वो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से हमें ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी हम बहुत सी बातें कैजुअली ले लेते हैं कि अरे चल यार हो जाएगा, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इतना क्यों सोचती है, तू बहुत सोचती है, ऐसा भी कभी कभी हम अपने जो दोस्त हैं या फिर हमारी जो सहेलियां हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे कभी कभी डिस्कशन में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन इस वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस कैजुअल बिहेवियर के कारण। वजह चाहे कोई भी हो, यानी कि लापरवाही हो या फिर आपके साथ कभी कभी कुछ इत्तफाक हो जाता है, तो वजह कुछ भी हो, अगर एक बार ये वाकया हो जाता है कोई, तो फिर उसके लिए पछतावा करने से कुछ नहीं हासिल होता। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें पहले तो बहुत सावधानी से वो काम करना है, कैजुअल बिहेवियर से काम नहीं होने वाला वो। और इस वीकेंड में तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बहुत कैजुअली कर जाते हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगर वो कंटिन्यू बताना चालू कर दूँ मैं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी बीच में।

वैसे वीकेंड का सबसे जरूरी काम बताऊं क्या होता है? शायद आपने ठीक अंदाजा लगा लिया होगा, या फिर शायद आपने ठीक अंदाजा नहीं भी लगाया होगा, क्योंकि वीकेंड का सबसे जरूरी काम होता है साफ सफाई का। जी हाँ भाई, हमारे घर में तो जैसे त्योहार की तर्ज पर वीकेंड में साफ सफाई का प्रोग्राम होता है, शायद आपके भी घर में हो। और एक तो ऐसा शनिवार होता ही है जिसमें दूसरे दिन रविवार के दिन जो है इस साफ सफाई वाला प्रोग्राम सेलिब्रेट होता है। लेकिन अब यानी कि अब जब बरसात का मौसम बहुत ही नज़दीक है, तो ये जो सारी साफ सफाई या फिर ये कहें कि हाइजीनिक जो प्रोसेस है, ये शुरू करना ख़ास तौर पर बरसात के मौसम वाला जो हाइजीनिक प्रोसीजर है वो शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बरसात में जब मौसम बदलता है सडनली, तो बहुत सारी एहतियात बरतनी ज़रूरी होती है। और जो हम अपने खान पान में बदलाव करते हैं या फिर रहन सहन में बदलाव करते हैं, वो तो होते ही हैं, जो नॉर्मली होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ख़ास ख्याल रखते हैं कि भाई गंदे पैर घर में न जाएं या फिर जूतों से पानी घर में न जाए, बहुत सी जो है एहतियात हम बरतते हैं, तो वो शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि मौसम की शुरुआत में ही पानी उबाल कर हम पीते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी एक आदत ही कर लेनी चाहिए, तो ऐसा ही डॉक्टर साहब कहते हैं। तो बहुत सारी बातें जो बरसात का मौसम हम एंजॉय तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं 107.1 MHz पर आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, जिसे आप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। प्रोग्राम है लव यू जिंदगी।

आपको भी ज़रूर याद होगा, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं कि आज 6 जून है और सुनील दत्त जी की जन्म जयंती के उपलक्ष में हम तुम प्रोग्राम में उन पर फिल्माए गए गीत हम पेश करेंगे। जाहिर सी बात है फरमाइश आपकी ही होगी और इसीलिए 7:10 पर हम तुम प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं पर फिल्माएंगे गीत सुनवाएंगे। आप ज़रूर आपकी फरमाइश भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और हम तो प्रोग्राम में हम आपकी फरमाइश पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल और एक आखिरी गीत आपको सुनवाने वाली हूँ क्योंकि लव यू ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आखिरी पड़ाव पर पहुँच गए हैं। लेकिन आपको बता दूं ठीक 6 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और 6:10 पर भी मराठी समाचार होंगे। 6:20 पर अंदाजे बयां प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हो जाएंगे फिर से। लेकिन आपको जो मैंने कहा कि आपकी जो फरमाइश है वो हमें ज़रूर भेजिए ताकि वक्त से पहले हमें मिल जाए और हम आपको आपके पसंदीदा गीत सुनवा पाएँ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूं चंद नायाब शेर और कुछ चुनिंदा गजलों का प्रोग्राम अंदाजी बयां न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। शुरुआत करते हैं अंदाजी बयां प्रोग्राम की इस गजल के साथ, जिसे आवाज दी है बेगम अख्तर साहब।

बेगम अख्तर साहिबा की आवाज़ में आप ये गज़ल सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर।

एक खत जो परेशानी में लिखा गया। परेशानी बढ़ते बढ़ते फुरकत तक पहुंच गई और मोहब्बत अधूरी सी रह गई। मोहब्बत अधूरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए, होठ हंसे मगर दिल के जख्म गहरे रह गए। वक्त ने सिखाया हंस के जीना, मगर क्या करें, यादों के सहारे हम उसी डगर पर ठहरे से रह गए।

0: अरे रीमा,
1: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जब ये रस्में, ये रिवाज, ये दुनिया की जो सारी पाबंदियां दीवार बनकर खड़ी रहती हैं, तो फिर कुछ रिश्ते जो हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब ये दीवारें गिरती हैं तो वही रिश्ते, वही मोहब्बत के रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेरी मुस्कुराहट के बिना कुछ भी नहीं, दिल की धड़कन में अब वो लुत्फ भी नहीं। तू अगर पास नहीं तो दिल को सुकून भी नहीं, मोहब्बत में अब वो पहले सा जुनून भी नहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी। आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां प्रोग्राम। एक आखिरी गज़ल आपको सुनवाने वाली हूं इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए गीत आप सुनेंगे हम तुम प्रोग्राम में। और स्पेशल ये प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए गीत हैं और फरमाइशें होंगी आपकी, तो आपकी फरमाइश भेजना हमें व्हाट्सएप पर मत भूलिएगा। ठीक 7:10 पर हम तुम प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ठीक 7 आप मराठी में समाचार सुनेंगे। अब एक आखिरी पेशकश अंदाजे में इस प्रोग्राम

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं। ठीक 7:11 हो रहे हैं और हम तुम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें फरमाइश भेजिए और हम आपको गीत सुनवाएंगे हम तुम इस प्रोग्राम में। और आज ये हम तुम प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के हम तुम प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए गीत। गीत पहला सुनवाऊं इस प्रोग्राम का, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहती हूँ। भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप awards.gov.in ये वेबसाइट देखें और प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है इसका A कैपिटल, इसमें आगे 2524467042 और पासवर्ड है इसका A कैपिटल A स्मॉल लेटर U और 779 #157 ये पासवर्ड है। और आपके प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2026। ये सूचना समाप्त हुई और अब मुड़ते हैं हम तुम प्रोग्राम की ओर और प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। उसने कहा था इस फिल्म से सुनील दत्त साहब के साथ इस गीत में, ये गीत पिक्चराइज हुआ है चुलबुली सी बहुत ही प्यारी सी नंदा जी पर। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। दोस्तों खानदान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में अभी आप, जिसे फिल्माया गया था बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल नूतन जी पर, और घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ और एक पैर से वो चल नहीं पाते हैं, ऐसे सुनील दत्त साहब ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है इस फिल्म में, और बहुत ही प्यारा सा गाना। खानदान फिल्म के गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, और आज उनकी भी जन्म जयंती है, तो ये मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, और आप सभी के जो हैं बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, और आप सभी जो हैं वो कमेंट्स भेज रहे हैं कि सुनील दत्त साहब कितनी बड़ी हस्ती थे, कितने बड़े अभिनेता थे, कितनी बड़े जो हैं उनका व्यक्तित्व था, कितने अच्छे वो इंसान थे, वो सारे जो मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी मैं आपकी पसंदीदा गीत जो हैं वो आपके लिए सुनवाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, हरी कर रहे हैं सारे कि हमारा गीत प्ले कीजिए, हमारी फरमाइश प्ले कीजिए। तो अगला गीत जो आपको मैं सुनवा रही हूँ ये है मेरा साया, इस फिल्म से सुनील दत्त साहब पर ये फिल्माया गया सैड सॉन्ग है।

हम तुम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए गाने, जिन्हें आप ही ने फरमाइश करके हमें बताए हैं। जिन श्रोताओं ने बताए हैं उनके नाम आपको बता दूं, पुणे से राकेश माथुर साहब, इंदौर से अजय साखरे जी, फिरोज सिगनपुरिया, अरविंद कुलकर्णी जी का इचल करंजी से मैसेज आया है, प्रदीप अनंत कृष्णन चेंबूर से, प्रणव शिंदे मुंबई से, बाबा इनका दादर से मैसेज आया है, पंकज मोहड़ अमरावती से, विजेंद्र घाटोल अकोला से, महेश बोहरा अजमेर से, राज और तेजस कवठणकर दादर से, विठल मुंगा से और चेतन कुमार जी का भी मैसेज आया है। दोस्तों अभी और लिस्ट है लिसनर्स की, लेकिन थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं, तब तक आप सुनिए ये गीत। ये गीत है हमराज इस फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ है।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल और प्रोग्राम है हम तुम। सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए गीत आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं, जिनको आपने ही फरमाइश करके हमें बताया है, मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप पर। छाया फिल्म का ये गीत था और सुनील दत्त साहब के साथ चुलबुली सी, बहुत प्यारी सी आशा पारेख इस फिल्म में थी और उन दोनों पर पिक्चराइज हुआ ये गाना, लता जी और तलत साहब ने गाया हुआ। दोस्तों, जिन श्रोताओं की लिस्ट पढ़ते पढ़ते में रुक गई थी पानी पीने के लिए, वो लिस्ट फिर से आपको सुनवाती हूँ, आगे पढ़ती हूँ। अकोला से प्रमोद चिंचलकर जी का मैसेज आया था, राजस्थान से सुनील यादव, हीरामणि और पारसमणि वर्मा छत्तीसगढ़ से, मेहर और ममता अरोड़ा राजस्थान से, डिंपल और मीनाक्षी गोस्वामी जी का छत्तीसगढ़ से, छाया टोपी वाला जी का गोरेगांव से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का मेरठ कैंट से, अर्जुन हार्दी जी का मैसेज आया अशोक और राजश्री जोशी जी का विक्रोली से, आदर्श कनौजिया जी का दादर से मैसेज आया है। तो इन सारे जो श्रोता हैं, इन्होंने हमें मैसेजेस भेजे और जो हैं हमें गीत फरमाइश के भेजे। मुकेश कश्यप जी का अभी अभी अभी मैसेज आया है। तो हम सारे गीत जो हैं आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता दूं, वो गीत जो आज मेरी दोस्त संतोष जी ने आपके लिए प्ले किए थे दोपहर के प्रोग्राम में, वो गीत मैंने जानबूझ के जो हैं वो नहीं बजाए, क्योंकि वो रिपीट हो जाते फिर। इसलिए वो गीत जिनको आपने फरमाइश की है और सुबह के दोपहर के प्रोग्राम में वो नहीं बजे हैं, ऐसे गीत मैंने आपको हम तुम प्रोग्राम में सुनवाने की कोशिश की है। अगला गीत जो है वो पड़ोसन इस फिल्म से है, किशोर कुमार की आवाज़ में, आपने पहचान ही लिया होगा।

आप सुन रहे हैं हम तुम प्रोग्राम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोस्तों आखिरी गीत आपको सुनवा रही हूँ वक्त इस फिल्म से। आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं और ये फिल्म आया गया है साधना जी और सुनील दत्त साहब पर। इस गीत के साथ ही दीजिए आकांक्षा को इजाजत और रहिए एफएम रेनबो चैनल के साथ, क्योंकि ठीक 8 बजे आपके साथ होंगे मेरे प्यारे मित्र फली, जो अंग्रेजी प्रोग्राम पेश करेंगे रॉक विथ जॉक, और नंबर 1 आरजे हैं वो मुंबई के। तो सुनना मत भूलिए रॉक विथ जॉक फली के साथ। दीजिए आकांक्षा को इजाजत इस गीत के साथ।

0: Whitney Houston over there, number 21, just missing out the top 20 of the 100 greatest pop R&B songs of all time. Run to You. Do you know, this is the song that lost the Grammy to Peebo Bryson's A Whole New World. I couldn't believe it. Whitney and Peebo were up for the same Grammy and the Oscar as well. And Whitney lost both to Peebo Bryson for A Whole New World. She lost the Oscar and the Grammy as well. Keep listening in to Akashwani's FM Rainbow Channel. It's time for the news now. The news in Hindi will be up at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And we'll be back with more fabulous music at 9:15 on Mumbai's number one radio station. And don't you people forget that. Stay tuned for the news coming up right now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल

0: विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ

0: मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर है हाजिर आपके दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है रंग महफिल। और आज फिर से होगा वही माहौल, दौर चलेगा गीतों और गजलों का, किसी का दिल होगा बेकरार तो कोई

जी हाँ दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस आने लगे हैं मेरे पास। सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है बढ़िया गाने प्ले हो रहे हैं। और जो दूसरा मैसेज आया है मेरे पास, वो लिखते हैं आरजे रेखा सिस्टर साहिबा जी आदाब, प्रोग्राम आपकी याद आती रही में गैर हाजिर रहे हम पूरी फैमिली, इस वक्त आपको फरीदाबाद हरियाणा में सुन रहे हैं, एक शादी में शिरकत करने आए हुए हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया लिखते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, वो लिखते हैं नमस्ते रेखा मैडम जी, पंकज उदास जी की आवाज़ में शानदार गज़ल, कल सुबह जल्दी भी उठना है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और आपका प्रोग्राम सुनना भी है, मैं क्या करूं, वरुण फ्रॉम इंदौर से। हाँ भाई, ये तो है। और वैसे भी ना वरुण जी, मैंने सुना है कि इंदौर वाले ना जल्दी सो जाया करते हैं, लेकिन देखिए आप इस कश्मकश में हैं कि जीतेगा कौन, नींद जीतेगी या फिर मेरी जिद, यानी कि आपकी जिद है कि प्रोग्राम सुनना है, और नींद भी अपना डंडा लेकर खड़ी है कि चलो भाई सोना है। आप देखना ये है कि आखिर जीत होती किसकी है एक और मैसेज ले लेते हैं। देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, जिनके नाम नहीं आएंगे मैं उनके मैसेजेस नहीं लूँगी, तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप अपना मैसेज भेजें तो अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजें, और अगर जगह का नाम लिख सकते हैं तो और भी बेहतर है। और वैसे भी अभी तो हमारे पास वक्त बहुत है, तो फिर जल्दी किस बात की है, सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और रंगे महफिल को आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और NCR में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप हमें सुन सकते हैं ऐप के जरिए। तो चलिए एक और खूबसूरत सी गजल सुन लेते हैं चित्रा सिंह की आवाज में।

या दोस्तों, कभी कभी एहसास हर चीज़ का दिलाना ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो इश्क, मोहब्बत, प्यार हो या फिर हो दोस्ती। मेरे पास एक और मैसेज आया है, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। वो लिखते हैं, आदरणीय आरसी रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम। कार्यक्रम रंगे महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। पंकज उदास जी की आवाज़ में गज़ल अच्छी लग रही है। दिल से बधाई बड़ी वाली, आपकी संध्या और रात्रि बहुत बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद।

तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और हाँ, उन्होंने छोटी सी शिकायत भी कर दी है कि उनका मैसेज नहीं लिया गया था पिछले प्रोग्राम में। तो दोस्त, मैं तो पहले ही कह देती हूँ कि भाई मुझसे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी किसी के मैसेजेस रह जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके मैसेजेस रह जाते हैं, लेकिन उनसे मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उनके मैसेजेस ले लेती हूँ। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि आरजे रेखा जी, हम तो FM के सारे शोज हिंदी रेडियो की ऐप से सुनते हैं जी। प्रदीप सलूजा जी लिखते हैं और वो लिखते हैं कि सॉरी जी, आने में लेट हो गया, इसलिए शॉप से भाग भाग के आया हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। तो प्रदीप सलूजा जी, आपके जैसे सुनने वाले होने चाहिए जी हाँ, जो म्यूज़िक के इतने इतने दीवाने हों। और आप तो जानते ही हैं, रंगे महफिल में जब गीत और गज़लों का दौर चलता है तो दिल तो बेकरार हो जाता है। बेकरारी में भी करार मिलता है दोस्तों, बेकरारी में भी करार मिलता है। दिल के टुकड़े होने पर भी फिर से शख्स मुस्कुराता है। बस शर्त इतनी सी है कि फिर से उसे कोई याद दिलाने वाला हो कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम बैक दोस्तों। सरगम के बिना साज के कोई मायने नहीं होते। जी हाँ, सरगम के बिना साज के कोई मायने नहीं होते। शब्दों के बिना गीत कैसा और एहसास के बिना प्रेम कैसा। कहने को बातें हजारों हैं पर कहना बस इतना ही है कि कितनी मिलती है मेरी गजलों से तेरी सूरत सनम। कितनी मिलती है मेरी गजलों से तेरी सूरत सनम। लोग तुझको मेरा महबूब आज से नहीं बहुत पहले से समझते हैं।

जी हाँ, एक और मैसेज आया है, बल्कि ये कहीं फिर से मैसेज आया है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। आरजी रेखा चौधरी जी, आप एक आरजी तो हो ही अच्छी, साथ ही साथ एक अच्छी लेखिका भी हो जी। ये लिखा है प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से, और उन्होंने पहले जो एड्रेस लिखा ना लगता है पूरा एड्रेस लिखना चाह रहे

सीधे फिर सिर्फ और सिर्फ नियर मेट्रो स्टेशन लिखा और कौन सी लाइन जाती है उनके घर तक ये भी लिखा है। तो खैर, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेरे पास मैसेज आया है नईब पशा बेंगलोर से। रेखा जी, ब्यूटीफुल गज़ल एक लड़की, ब्यूटीफुल सॉन्ग, माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट सॉन्ग। तो थैंक यू सो मच। और ये हमें सुन रहे हैं बेंगलोर से। एक और मैसेज ले ही लेते हैं। और इन्होंने लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है, तो मैंने पहले ही कह दिया था जो लिसनर्स नाम नहीं लिखेंगे उनका मैसेज आज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आप भी सोचते हैं कि शॉर्ट में मैसेज भेज दें, रेखा जी तो पढ़ ही लेती हैं, तो फिर आज तो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तो चलिए, इससे आपको सबक भी तो मिलना चाहिए कि अधूरा मैसेज कभी भी किसी को नहीं भेजना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते बढ़ाते बस यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी कुछ बातें समझ के परे होती हैं, कभी कभी कुछ बातें समझ के परे होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें अधूरी सी महसूस होती हैं, है ना। जबकि सब उन्हें अधूरी नहीं पूरी कहते हैं, और जो अधूरी होती है वो भी हमें पता नहीं क्यों कैसे क्यों कैसे पूरी लगने लगती हैं। और जब जब बेचैन मोहब्बत का अंदाज समझ ना आए तो दिन में या रात में कभी भी बेचैनी सी भी महसूस होती है। रात को नींद ना आना, बेचैनी बढ़ जाना, जी हाँ कभी कभी लगता है हम बीमार हैं। जी नहीं, ये बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन 90% ये जो सिम्टम्स हैं ये प्यार इश्क मोहब्बत के हैं। तो देख लीजिए अब ये सिम्टम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत है किसी डॉक्टर को, वैद्य को,

0: जी दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया है। मैम, आप प्लीज़ अपने शो की टाइमिंग बता दीजिए। मैं इस टाइम पहली बार रेडियो ऑन करके आपको सुन रही हूँ। मैं शिल्पी फ्रॉम गुलावठी बुलंदशहर से, तो बुलंदशहर से सुन रही हैं। वैसे तो दोस्त, हमारा जो टाइमिंग है, यानी कि मेरा जो टाइमिंग है, ज़्यादातर यही रहता है, 9 बजे का प्रोग्राम और फिर 11 बजे का। 9 बजे का आपकी याद आती रही और 11 बजे का, यानी कि 11:05 से गज़लों का रंगे महफिल प्रोग्राम चलता है। और डेली डेली तो आप हर प्रोग्राम को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेजेंटर्स अलग अलग होते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं। वो लिखते हैं शर्मा जी कि आज मेरा मैसेज नहीं लिया। तो भाई, आपने मैसेज भेजा ही कहाँ था? अभी अभी भेज रही हैं और बोल रहे हैं कि मेरा मैसेज लिया ही नहीं था। आपने पिछले प्रोग्राम में बिल्कुल कोई मैसेज नहीं लिखा है शर्मा जी, वरना मेरी नज़रों के सामने से हर मैसेज जाता है और मुझे पता होता है कौन सा मैसेज छूटा है मुझसे और कौन सा मैसेज पढ़ा है मैंने। तो चलिए, खैर, आपने ये पूछा है कि जो मैसेजेस रह गए थे वो आप इस शो में पढ़ेंगे, और इस शो के मैसेजेस जो रह जाएंगे वो कब पढ़ेंगी। और आगे आगे आपने इतनी लंबी चौड़ी, मतलब ना चाहते हुए भी सोच रही हूँ कि शायद ये शायरी ही है, और आपने एक फरमाइश करने की कोशिश की है, लेकिन फरमाइश नहीं कहेंगे इसे, इसे तो कहेंगे कि आपने गुजारिश की है कि कोई ऐसी गज़ल सुनवाई जाए कि उससे आपका मन ठीक हो जाए। तो आज आपको क्या हुआ है? लगता है किसी बात से किसी से नाराज हैं, या फिर थोड़े से किसी से खफा खफा से हैं, या फिर क्या बात है समझ में नहीं आ रही। जो भी है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसी गज़ल ज़रूर सुनवाऊंगी जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखती हैं, थैंक यू मैम। जी हाँ, तो ये थैंक यू जो बोला है वो बुलंदशहर से ही शिल्पी ने बोला है। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, आप देखिए ना, उन्होंने भी नाम नहीं लिखा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। एक और मैसेज मेरे पास आया है, वॉकिंग रास्ता बस से 7 से 8 मिनट का है जी, मेट्रो स्टेशन से जी। प्रदीप सलूजा जी लिखते हैं कि जब भी आप इधर आएँ तो प्लीज़ आइएगा। तो ठीक है सलूजा जी, अब मुझे ये तो पता नहीं कि आपकी शॉप है किस चीज़ की, लेकिन अगर मेरा वहाँ आना हुआ तो ज़रूर ज़रूर मैं आपकी शॉप पर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आपके मैसेजेस वैसे तो धड़ाधड़ आए जा रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आता, कभी कभी जब प्रोग्राम का पैकअप होने वाला होता है तब आपके मैसेजेस लगातार बहुत तेज़ी से आते हैं। एक मैसेज मेरे पास आया है, हाय मैम, मैं रितु बत्रा दिल्ली के गोपाल पार्क में रहती हूँ। जी हाँ, आपके पहले भी मैसेजेस आ चुके हैं और उन्होंने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कि आप बहुत ही अच्छे सॉन्ग सुनवाती हैं, तो थैंक यू सो मच। एक और मैं मैसेज ले लेती हूँ, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, तो भाई आज तो मैं कह ही चुकी हूँ जो अपना नाम नहीं लिखेंगे मैं उनका मैसेज बिल्कुल नहीं लूँगी अपने प्रोग्राम में। तो चलिए, बात हो रही थी एक बहुत ही ऐसी खूबसूरत गज़ल की जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि रेखा जी अगला प्रोग्राम कब है आपका, आप फिर कब आने वाली हैं, और ये तो बताइए कि अब कब मिलने वाली हैं। और इस बात पर मैं जो आपको गजल सुनाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही खूबसूरत आवाज में है और 99.5% आपको बता सकती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी।

0: क्योंकि मैं इस क्योंकि वो सोने जा रहे हैं इसलिए उनका मैसेज पढ़ना ज़रूरी है। और ये मैसेज मेरे पास आया है मलपण गोवा से, और एक गज़ल और सुनवा दीजिए। तो भाई ठीक है, और अपना नाम आपने नवलू वर्क लिखा है, तो भाई इनका भी मैसेज पढ़ लिया गया है। अब टिक टिक करती घड़ी बहुत कुछ कह रही है, फिलहाल बहुत ही छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले लेती हूँ और फिर आप से विदा भी लेनी है एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी दोस्तों, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, उनमें से एक और मैसेज पढ़ लेती हूँ फटाफट से। जमाने भर की खुशियाँ मिल जाएं तुमको, हम मिले ना मिले वो खुशियाँ मिल जाएं तुमको। आदिल कवर लिखते हैं, अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़। आदिल कवर गुन्नौर से लिखते हैं। अरे एक और मेरे पास मैसेज आया पर बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, तो माफ़ कीजिएगा मैं मैसेज नहीं ले पाऊंगी। बस यही कहूंगी कि हमेशा याद आती रहिए, याद करती रहिए और इसी तरह से रेनबो इंडिया सुनते रहिए। फिलहाल टिक टिक करती घड़ी बहुत कुछ कह रही है, आपसे इजाजत लेने का समय आ चुका है। तो अपनी दोस्त आरसी यानी कि रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर होगी। शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए और रेनबो इंडिया इसी तरह से सुनते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए

0: घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। वेनेजुएला गणराज्य के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अपना भारत दौरा पूरा कर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो गईं। सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल प्रमुख डॉ. राजेश गांवड़े, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार और अन्य गणमान्य व्यक्ति हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिए उपस्थित रहे। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो के प्रसारण का।

जीरो आर शो का पहला गीत आपने सुना, मीट ब्रदर्स नेहा कक्कड़ और रोज किला की आवाजों में, फिल्म थी जुड़वा 2।

0: भूमि त्रिवेदी और राजा कुमारी की आवाजों में अभी आपने सुना जीरो फिल्म से ये गीत। इरशाद कामिल के बोल थे और अजय अतुल का संगीत।
1: Once upon a time in La La La, soon as a Mohammed, this man had.

सोनू निगम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना 30 मार खान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम जारी है जीरो आर शो आकाशवाणी के रेनबो चैनल से।

0: विशाल ददलानी और जोनिता गांधी की आवाजों में अभी आपने सुना अ जेंटलमैन फिल्म का ये गीत। वायु का लिखा हुआ गीत था और सचिन जिगर का संगीत।
1: ए वो ईद पे पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।
3: अरे!

बॉडीगार्ड फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत सलमान खान और बैंड ऑफ पावर की आवाज़ों में, शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ गीत और हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के रेनबो चैनल से कार्यक्रम जारी है इस वक्त जीरो आर शो। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

के और सुनी थी चौहान की आवाज़ें थी। फिल्म था टैक्सी नंबर 9211, विशाल ददलानी की बोल और विशाल शेखर का संगीत।

चिन्मय श्रीपदा की आवाज में अभी आपने सुना ब्रदर्स फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अजय अतुल का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय

0: हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इजराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तानी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहानी रात।

राज फिल्म से अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण को। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन और अलका याग्निक को फिल्म नायक से।

सुहानी रात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल से। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म राजा से।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वल्स

पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इजरायल के हमले में 2 महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इजरायल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हीराब,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सके तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ। अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर?
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लू। वो देखते हो वो?
0: हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी।
1: हाँ पकड़ लाओ।
0: मुर्गी?
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पार्टी शुरू हुई।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को

डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की।

पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात के 3:05 और 28 सेकेंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, कुछ प्यारे से गीत आपके लिए। मैं लेकर आई हूँ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की संभावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने

अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, हमारे साथी सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:05:28। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी अलमास रजा का नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी